होता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: जब कोई अपना दुनिया से विदा होता है तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। ऊपर से आखिरी रस्मों की जिम्मेदारियाँ, पूरी धार्मिक रीति और भरपूर हमदर्दी के साथ फ्यूनरल कराते हैं एशियन फ्यूनरल केयर। सर्विस हॉल या इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, स्नान या दूसरी सहूलियत, दुख की ऐसी घड़ी में कॉन्टैक्ट संजय लोधिया एट एशियन फ्यूनरल केयर, 35 कैंटन पार्क परेड कैंटन रोड और 66 मोनार्क परेड लंदन रोड मिचम। फोन 0208-909-3030 और विजिट एशियन फ्यूनरल केयर।
1: आज भी जलसा, कल भी जलसा, हर मौके पे जलसा ही जलसा। घुघरा, मठिया, खाजली और जलेबी गाठिया का तो जवाब ही नहीं। मिठाई और फरसान के बाद शॉर्ट जलसा स्वीट्स एंड सेवरीज, 28 वॉटफोर्ड रोड, वेम्बली। ओपन ट्यूसडे टू संडे।
2: नीड एनीथिंग फ्रॉम टेस्को? हाउ अबाउट हंड्रेड्स ऑफ द टेस्को प्रोडक्ट्स यू नो एंड लव, प्राइस मैच टू आल्डी, हेल्पिंग यू बैग मोर ऑफ आवर फ्रेश एसेंशियल्स एंड कबर्ड स्टेपल्स। सो next time you pop in store or shop online with us, just look out for the Aldi Price Match logo. Tesco. Every little helps. Comparable product prices checked twice weekly pro rata, varies by store, selected products matched in express, excludes promotions, Northern Ireland and Woosh. See tesco.com/aldiprice match.
3: Here at Acorn Insurance, we help taxi drivers like you so you can help people like Thomas.
4: Taxi!
3: He needs to get home for bedtime stories because he does the absolute best voices. You help Thomas show he cares, and we'll help you take care of business. Acorn Insurance, the UK's largest taxi insurance specialists. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.
5: Why was Starling top of the table as Which's Best Bank in a 2026 review? You tell us. Oh, you already have. Some of you love our 5-star rated app, designed to build great habits, even calling Starling
6: the best bank I've ever been with.
5: A lot of you like speaking to a human 24/7 with our award-winning customer support.
7: Hello, you're through to Starling. How can I help?
5: Or there's the zero fees for spending abroad. You lot love that.
8: Ooh la la, j'adore.
5: Join millions of Starling customers. Good with money starts here.
9: No, it's okay. Don't adjust your radio. That's the sound of a company that did not advertise on Sunrise Radio. Now let's have a listen to a company that did. Can you hear the difference? Advertise on the UK's number one commercial Asian radio station and see the difference for yourself. Call the Sunrise Radio sales team on 020 8574 7777.

0: framework through which you practice spirituality. Religion gives you rules and regulations. कि आपको इस त्यौहार को ऐसे मनाना है, इस दिन मनाना है, इतनी बार पूजा अर्चना करनी है, या फिर किसी और रिलीजन को, धर्म को अगर आप देखें तो आपको, यू नो, यू हैव सर्टन वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग, वेदर इट इज क्रिसमस, वेदर इट इज ईद, वेदर इट इज नानक जयंती. रिलीजन गिव्स यू द टेनेट्स एंड दे आर fairly set in stone, because that is how people have practiced their religion for generations. But if you are someone who perhaps doesn't believe so much in the rituals, but you actually try and imbibe the essence of not just your religion, but every religion in the world, the essence is universal. Be a good human being. Be kind. Be helpful. Don't just think of yourself. Think of others as well, right? That is the essence. Be a good human. As long as you can practice that to the best of our ability and every single day, I think we are being spiritual and it's not such a bad thing at all. You know, agar aap, kuch log kehte hain ki 5 baar aapko namaz padhni hai, agar aap nahi pad sake 5 baar namaz. Kuch log kehte hain ki navratri mein aapko ye padhna hai, ye kehna hai, itni baar kehna hai, in phoolon se bhagwan ki, ishwar ki prarthna ke sath, you know, unko ye arpit karna hai. If you are unable to do these things religiously, as per a religious text, is that such a bad thing? Of course, those who find the time to do both, I suppose they are the ones who we really need to tip our hat to. But this got us talking about, you know, the reason why perhaps people are gravitating to certain religious figures is because there is a certain spirituality that also existed in their story, in their lifetime. And that is what inspires audiences around the world. Correct, incorrect, don't really care. Let me know. 07925-702-72 is the number for that. On the other side, option A sounds like this. The inimitable R.D. Barman from Kasme Vade. Kal kya hoga, kisko pata is option A. And Suman Kalyanpur and Rafi Sahab from Brahmachari. आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है, सबको खबर हो गई, वी आर ट्रेंडिंग ऑन इंस्टाग्राम. सो क्या तो क्या, विच वन ऑफ दीज टू इज इट गोइंग टू बी, इज इट गोइंग टू बी कस्मे वादे और ब्रह्मचारी, ए और बी? व्हाट्सएप में
1: शबनम साही ऑन सनराइज विद सोनी टीवी. From smashing sixes to smashing it as a host, cricketer Rohit Sharma brings you a brand new fun show, Family Full House. Starts 19th September only on Sony TV.
2: Travel invites you to Dubai, where world-class hospitality, stunning resorts and iconic attractions await. From beaches to desert adventures, there's something for everyone, all at unbeatable prices. Call 0208 574 8410. South All Travel, at all protected. South All Travel can
3: take you there. My mum started cooking with khanam ki in the 70s. Dal makhani, butter chicken, these have been my family's favorite dishes. Using khanam ghee for 3 generations. The aroma, that creamy melt in your mouth, satisfying taste. Ah, now my kids insist I use this superfood for their eggs and lamb chops.
4: Mom, is the dinner ready? As I can smell the khanam ghee.
3: Khanam Ghee, the legacy lives on.
5: Khanam Ghee, a brand from SOP International. Available at all major supermarkets and your trusted local Asian supermarkets.
6: जब कोई अपना दुनिया से विदा होता है तो दर्द बहुत ज्यादा होता है. ऊपर से आखिरी रस्मों की जिम्मेदारियाँ, पूरी धार्मिक रीति और भरपूर हमदर्दी के साथ फ्यूनरल कराते हैं एशियन फ्यूनरल केयर. सर्विस हॉल या इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, स्नान या दूसरी सहूलियत, दुख की ऐसी घड़ी में कॉन्टैक्ट संजय लोधिया एट एशियन फ्यूनरल केयर, 35 कैंटन पार्क परेड कैंटन रोड और 66 मोनार्क परेड लंदन रोड मिचम. फोन 0208-909-3030 और विजिट एशियन फ्यूनरल care.com.
7: हिमालय कारपेट्स की धड़कती हुई सेल, गर्मी से कीमतें पिघलती हुई सेल, रूम साइज रेमिनेंट्स 30 pounds से शुरू, तमाम रोल स्टॉक पर मार्क प्राइसेस पर 20% ऑफ, लेमिनेट फ्लोरिंग फ्रॉम 9 pounds स्क्वायर मीटर, एलवीटी फ्लोरिंग फ्रॉम 12 pounds स्क्वायर मीटर, रग्स, बेड्स, सोफास सब पर 50% ऑफ. कारपेट्स की तो ये सबसे बड़ी सेल है, चूकिए नहीं.

0: A song from the 60s, as you can tell. Old is gold. So many of you are saying that. Suman Kalyanpur and Rafi Sahab on the vocals. Aajkal Tere Mere Pyar Ki Charche. इसे आप सुन रहे हैं सनराइज पर आज ट्यूजडे की सुबह 15 सितंबर की सुबह शबनम साही के साथ सनराइज रेडियो पर इस घंटे का हमारा लिसनर्स चॉइस.
1: लिसनर्स चॉइस ब्रॉट टू यू बाय कलर्स टीवी.
0: वॉच खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7:30 PM ऑन कलर्स टीवी एंड जियो हॉटस्टार पावर्ड बाय स्टार टूर्स एसोसिएट स्पॉन्सर लाइनक्राफ्ट. The hit of the hour on Sunrise Radio brought to you by South Hole Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholetravel.co.uk. Usman Sahab, welcome to the show. You're just in time for Varun Forever from the film Mirzapur, the movie. Good morning.

0: Back-to-back songs with Ambala Sweets, celebrating serving the community for 60 years. Check online at ambala.co.uk for your nearest store or 1 hour click and collect available. Ambala Sweets now open on Desborough Road, High Wycombe. Ambala, 100% vegetarian.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

नीतू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकां लई भंग होगी।